0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल at all protected.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
7: 4 beers, please, garçon!
6: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Laika Gold par.

0: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की

हुकुम ना कहया जाई, हुकमी होवन जी हुकुम मिले वड्याई। हुकमी उत्तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई, एक ना हुकमी बख्शीश।

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोट।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक्खा।

साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

लिखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाया नदियां ते

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साहब नानक रहन जा।

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कछ पका।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a gold, traffic and travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarvey here. Starting at Cranford, the A4 Bath Road heading out of town is currently closed there due to a police incident from Henley's roundabout to the Jolly Wagoners roundabout. Traffic is coping fairly well though. Dagenham A13 already seeing some congestion westbound from Raynham to Barking and that Lodge Avenue flyover. Already got a travel time there of around 15 minutes. Just a reminder, of course, Wimbledon's taking place this week, started yesterday, and we've got the roads around the All England Club. Some closures from 8:30 to 11:30 every day, so delays expected in and around Wimbledon, so do factor that in this morning. That's your latest traffic and travel.
3: Like a gold.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉव के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
5: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
6: Lottoke halone nandala.
5: At Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
9: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
11: ड्रीमिंग ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
12: Welcome to the jungle.
13: फिल्म बिल्कुल फेक,
12: हमारी फिल्म आर्मी वाली
14: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
13: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
12: स्टार कास्ट है
13: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
15: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
13: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
16: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
17: किस लिए फिल्म में।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
3: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
10: Like a Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
16: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: Breakfast with Kajal on Leica Gold. Leica Gold, traffic and travel.
1: Good morning, this is Cameron McGarvey here. First of all, the M25 clockwise at Junction 1A for Swanscombe. They've got a lane closed on the edge of Slip Road with that breakdown. Traffic is coping fairly well though. A4 Bath Road heading out of town at Cranford. They've got that closed westbound from the Henleys roundabout to the Jolly Wagoners roundabout. That's down to a police incident. Roads around Wimbledon, just a reminder, some daily closures between 8:30 and 11:30 in the evening due to, of course, Wimbledon taking place this week. And the North Circular at Finchley, we've got a broken down car with a lane blocked eastbound. This is at Finchley Road for the Henleys Corner with ongoing recovery work there. And that's your latest traffic and travel.
0: This is Leica Gold, the voice that touches every soul. Star Express presents Hari Haran's Soul India.
2: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hari Haran.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: की कह रहे हो?
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
6: पर टिलो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
0: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
12: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
13: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
12: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
13: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
12: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
14: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP,

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Gold, traffic and travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarva here. First of all, some good news. The M25 clockwise at junction 1A Swanscombe, that broken down vehicle has been recovered. The lane has reopened on that entry slip road. Cranford, A4 Bath Road heading out of town westbound from the Henley's roundabout to the Jolly Wagoners roundabout, still closed with that police incident and a diversion in operation for buses 81, 222 and the H98. A13 at Dagenham westbound looking slow between Raynham and Barking and the Lodge Avenue flyover. Stop start actually with a travel time of 35 minutes. And a reminder, Wimbledon of course started yesterday and we've got some closures between 8:30 and 11:30. That's your latest traffic and travel.
3: Like a goat.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 0 3963 5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
7: जदो भी कॉमेडी मूवी की गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नु हसा हसा के लोटपोट कीता.
8: की कह रहे हो?
7: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
8: की कह रहे हो?
9: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
10: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया.
7: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है.
11: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
12: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
13: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
14: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
13: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a go.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलिडे साथे.
5: सीरीन हॉलिडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
6: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
5: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
6: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
5: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो serenehollidays.co.uk पर.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
10: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
9: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
10: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit Cashback Remortgage.
9: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
11: Welcome to the jungle.
12: Film? बिल्कुल fake.
11: हमारी film army वाली.
13: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
12: Danger? एकदम real. और survival skills? Zero.
11: और star cast है?
12: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
14: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
12: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
14: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
15: मैं किस लिए फिल्म में?
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
17: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
18: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
19: 25? Seriously?
18: Sounds like Ojo time.
19: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
18: Sorry about the wait. How can I help?
19: You can help me celebrate. I won.
20: Feel the fun. Play Ojo.
21: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
22: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
23: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Gold, traffic and travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarvey here. First of all, the A4 Bath Road heading out of town at Cranford. We've got this closure still westbound from Henley's Corner towards Dolly Wagoner's roundabout. Congestion to the opposite side as well and queuing down to the park via the A312. This is due to a police incident. A13 westbound at Dagenham, stop start from Raynham to Barking and the Lodge Avenue flyover. Travel time there of around 45 minutes. Public transport, few things going on. Bakerloo line due to an operational incident. Severe delays reported, and on the Windrush London Overground line due to an earlier passenger taken ill, with severe delays between Highbury and Islington and West Croydon.
0: This is Leica Gold.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
4: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
5: की कह रहे हो?
4: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
5: की कह रहे हो?
6: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कह रहे
7: और टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
4: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
10: South of Travel, 7 days a week. South of Travel, 24 hours a day.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Southall Travel.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there.
12: Southall Travel, at all protected.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
5: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है?
16: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा। पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट TWPays.com/Leica या कॉल कीजिए 0203129-9840। TWPays, हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा बचत।
17: 10 डेज साउथ अफ्रीका एवरी मंथ फ्रॉम नवंबर टू मार्च। बुक बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट 200 ऑफ। विजिट sonatours.co.uk और कॉल 0208951011।
18: Leica Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले Leica Gold और ऑनलाइन सुनो LeicaGold.com पे।
19: Gold Breakfast with Kajol.
20: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: किशोर कुमार की आवाज में आर डी बर्मन का ये शानदार गाना जो जब आया था तब भी सबका फेवरेट था और आज भी सबका फेवरेट है, और आज के मौसम के हिसाब से तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। बाहर आज ऐसा ही लग रहा है जैसे कि सावन ही गिर रहा हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश बरस रही है जो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। ठंडक फील होती है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है और आज वैसा ही एहसास हो रहा है। तो आज जो बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी लग रही है हमें भी, और जो पेड़ पौधे हैं घास उनको भी, और आप सबको भी पसंद आ रही है। तो बिल्कुल इस तरह से आपने ये गीत सुना, और एक और पहला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूज़िक पर, एक और अपने ज़माने की सुपर ट्यून बॉबी, जिससे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने अपना डेब्यू किया था। और लीजिए दो बैक टू बैक गीतों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। ये है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, जहां पर ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक आपका साथ निभाऊंगी और सुनवाऊंगी आपको, यस, एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड क्लासिक्स। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, और जहाँ कहीं पर भी हैं हमारा साथ दे रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिल सकेंगे 125 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू करवाना पड़ेगा। और आपको याद दिला दे कि आज आखिरी दिन है फ़ायदा उठाने का, यानी कि आज आप अगर 75 pound का वाउचर जीतना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है जब आप 1000 pound से ज़्यादा ट्रांसफ़र करवाएंगे, या फिर 1 gram गोल्ड कॉइन मिल सकता है आपको जब आप 2000 pound से ज़्यादा ट्रांसफ़र करवाते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो भई आज फ्रांस और स्वीडन के बीच में एक बड़ा मैच होने वाला है, और आपको याद दिला दें कि आप अपना 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैक लो से, और ये सब हो सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Leica

0: यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म त्रिशूल से लिया था ये गाना जो 1978 में आई थी। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और हमारे ढेरों साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं जिन पर एक नज़र ज़रूर डाली जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आपको बताती चलूँ कि मैं हूँ ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और अब समय है आज की ताजा समाचारों को सुनने का।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है, भारत के नए आर्मी चीफ बन गए हैं जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ ने आज 30 जून को भारत के नए सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। वो भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। जनरल सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है। जनरल द्विवेदी सेना में 40 साल से ज्यादा की सर्विस देने के बाद रिटायर हुए हैं। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए खड़गवासला के छात्र रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन लिया था। उन्हें दिसंबर 1986 आर्मर्ड कोर में कमीशन मिला था और सेना प्रमुख के पद का कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने थल सेना उप प्रमुख के रूप में भी काम किया है। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल रिफाइनरी में आग लगी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मदिनीपुर जिले में हल्दिया रिफाइनरी की नाफ्था ले जाने वाली पाइपलाइन में आज सुबह भीषण आग लग गई जिसमें कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। उधर दिल्ली कैबिनेट ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी और अप्रैल 2028 से पेट्रोल बाइक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। ईरान की ओर से मिल रही लगातार धमकियों के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले भारत आने वाले अधिकांश जहाजों ने अपनी ट्रैकिंग प्रणाली बंद कर दी है, यानी कि वो गो डार्क हो गए हैं। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत अगले साल तक 300 गीगावाट बिजली क्षमता तैयार कर रहा है। उधर दुनिया से खबर आ रही है कि पिछले हफ्ते पूरे यूरोप में गर्मी की लहर थी जिससे कई लोग प्रभावित हुए और इस गर्मी ने 1300 से ज़्यादा अधिक लोगों की जान अब तक ले ली है। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क में भी जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया और सारे रिकॉर्ड टूट गए तापमान को देखते हुए जून के। फुटबॉल वर्ल्ड कप से खबर आ रही है कि बताएं आपको कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 नॉकआउट के चरण मुकाबले जो शुरू होने वाले हैं जिसके तहत कल होने वाले इंग्लैंड बनाम काको मैच के लिए टीमें अटलांटा पहुंच चुकी हैं। आई थिंक ये मैच हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो उलट फेर हो रहा है मैच में, फीफा वर्ल्ड कप का जो अंतिम 32 के मुकाबले में जो मोरक्को और नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया है, दोनों के बीच मैच 1-1 से बराबर रहा है जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट हुआ है। मोरक्को ने मैच के अधिकांश हिस्से में अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन नीदरलैंड के बार्ट फेरब्रुगेन की शानदार गोलकीपिंग ने उन्हें बढ़त लेने से रोके रखा है। नीदरलैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया। नीदरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 3 मौके गवाए जिसके बाद इस्माइल साइबरी ने निर्णायक गोल मारकर मोरक्को को 3-2 की जीत दिलाई और अब मोरक्को का सामना 4 जुलाई को ह्यूस्टन में अंतिम 16 के मुकाबले में कनाडा से होगा। और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है और इस बार के एशियन गेम्स सितंबर महीने में जापान में होने वाले हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस बार मौजूदा चैंपियन के तौर पर खेलेगी। पिछली बार चाइना में हुए एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। और टीम में जो जिन सदस्यों को जगह मिली है उसमें है हरमनप्रीत कौर कैप्टन, स्मृति मंदाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, जैमिमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष विकेट कीपर, जी कमलिनी विकेट कीपर, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और नंदिनी शर्मा। यही थे आज के प्रमुख समाचार। आज के प्रमुख समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है Like a Gold Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।

0: सुनील दत्त और नूतन की फिल्म मिलन से था ये गाना, जिसमें मुकेश जी और लता जी की आवाजें थी। और भाई आजकल फीफा वर्ल्ड कप का फीवर चल रहा है और सभी बड़े इंटरेस्ट के साथ मैच देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट चरण के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जिसके तहत कल मैच है इंग्लैंड और कांगो के बीच में, और उसके लिए टीमें ऑलरेडी अटलांटा पहुँच चुकी हैं। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, किसके हाथ में आएगा वर्ल्ड कप? सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल काफ़ी उलट फेर हो रहा है और बहुत अच्छी अच्छी टीम्स बाहर ऑलरेडी हो चुकी हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Koka Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: वैसे मैं तो क्रिकेट प्रेमी हूँ, मुझे फुटबॉल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत क्रेज़ है फुटबॉल का और हमारे लिसनर्स भी बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। तो देखा जाएगा, आप बता सकते हैं कि कौन सी है आपकी फेवरेट टीम और किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड तो होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार वर्ल्ड कप हाथ में उठा सकती है? लेकिन हमारे बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं, साथ ही साथ दे रहे हैं। थैंक यू अर्जुन जी, आप हमारे साथ हैं हमेशा ही। थैंक यू शरफून, आप आज घर पर हैं, और घर पर हैं तो आपकी मेरी कंपनी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। वियाना में अनिल सोनी जी हमारे साथ हैं, हेतल सोलंकी जुड़ चुके हैं, अरुणा जी थैंक यू, गीतों को एंजॉय कर रही हैं। थैंक यू विजय गुनोवा जी, थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी, कहते हैं जब रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है तो पकौड़े भी होने चाहिए इस मौसम में। सही कहा नरेंद्र जी, बारिश के मौसम में पता नहीं क्यों चाय पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे चाय पकौड़े ही क्यों, मुझे तो ये लगता है कि कोई भी मौसम हो, हमारी जो देसी डिशेज़ हैं, देसी जो खाना है, इतना स्वादिष्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कल्चर की अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब इंसान परहेज करे भी तो कैसे, खाना इतना स्वादिष्ट है कि नाना करते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं और बस फिर यही रहता है वजन बढ़ गया, वजन कैसे कम होगा, यही ख्याल आता है। एनीवेज अगर आप बना रहे हैं इस मौसम में चाय पकौड़े तो ज़रूर उनका लुत्फ उठाइए और एक एक्स्ट्रा पकौड़ा मेरी ओर से भी खाइए। थैंक यू तोजी जी, राजीव पटेल जी, जयंतन मीना, मृदु जी, प्रज्ञा काम पर हैं लेकिन हमारा साथ दे रही हैं, रक्षा पटेल जी थैंक यू, एंड ऑफकोर्स हमारे गिरीश जी भारत में सुन रहे हैं, थैंक यू, स्वागत है आपका। शेखर आनंद जी, हरीश खत्री जी, साहिर जी, रमीला, सभी जो साथ दे रही हैं हमारे शो में, सभी का स्वागत है। और अगला गीत मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड हॉलिडे ब्रेक ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
0: तो हॉलिडे भी जा सकते हैं, अगर दुबई जाना चाहते हैं तो साउथोल ट्रैवल से बात कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए ऑन 02085748410 पर। ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है और अब दुबई से रेस्ट्रिक्शंस भी हट चुके हैं, तो क्यों ना दुबई घूमने का प्रोग्राम बनाइए और साउथोल ट्रैवल से कॉन्टेक्ट कीजिए।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस।
3: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: जय श्री स्वामी नारायण। सेव द डेट संडे 19 जुलाई 2026 एनुअल रथ यात्रा के लिए भक्तों को मिलेगा पवित्र अवसर भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को हैरो और ब्रेंट की स्ट्रीट्स पर खींचने का। यात्रा शुरू होगी SKSS टेंपल कैंटन हैरो से और पूर्ण होगी श्री स्वामी नारायण टेंपल स्टैनमोर पर। ज्यादा जानकारी के लिए दोनों टेंपल्स के सोशल मीडिया और वेबसाइट्स SKSST.org और stanmoretemple.com विजिट करें। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो। जय श्री स्वामी नारायण।
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Welcome to the jungle.
8: Film bilkul fake.
7: Hamari film army wali.
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
8: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
7: स्टार कास्ट है
8: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यूथ स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
10: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
11: किस लिए फिल्म में.
12: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
13: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
14: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
13: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
15: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
16: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफटाइम spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
18: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM.

किस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। अनु मलिक के म्यूजिक पर कुमार शानू की आवाज में ये गाना शरफून कहती है मुझे बहुत पसंद है। चलिए ये गाना मैंने आपको डेडिकेट किया, वैसे ये गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। 90s के म्यूजिक में भी कुछ अलग ही बात है। कहते हैं 70s गोल्डन एरा था, लेकिन 90s का एरा भी कुछ

0: कम नहीं था। एक से बढ़कर एक गाने 90s के एरा के हैं जिन्हें जब सुनते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। हालांकि हम यहां पर आपको इस शो में क्लासिक्स ही सुनवाते हैं जिसे आप सब पसंद करते हैं, लेकिन 90s के गाने भी बहुत सुंदर हैं। प्रोग्राम में और भी शामिल करूंगी, लेकिन फिलहाल तो मिलूंगी आपसे न्यूज़ के उस पार।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Sir Keir Starmer is announcing what he says is a game-changing investment into defence. Included is £5 billion worth of spending on air, sea and land drones over the next 4 years. Plans come after months of wrangling over funding. A national maternity commissioner is to be appointed in England after calls to drive change in the sector. Baroness Amos's review of NHS services highlights issues such as women not being listened to. Her report also recommends a new national standard for triage. These families who contributed to her findings say lessons must be learned.
3: It just depends on how much faith you have in the government that they're actually going to deliver on what they set out, what those actions are.
4: You can do a report, but if you don't follow it up, how do they fund the changes? You can say what needs to be done, but then how do you implement that change?
2: Murderers who kill their partner or ex-partner at home could face an extra 10 years in prison. The Ministry of Justice is looking to strengthen sentencing to tackle violence against women and girls. Currently, most domestic murders result in more lenient punishments. Our correspondent Alex Rogers explains why.
5: The starting point for most domestic murders is 15 years, and that's because they take place in the home and because a weapon is already likely to be at the scene. But for other murders, where the weapon is taken to the scene with intent, the starting point is 25 years. So this is the government looking to close that 10-year gap.
2: Resident doctors in England will no longer go on strike. Members of the British Medical Association have voted to accept a fresh government offer on pay and conditions. The Health Secretary says settling the dispute will cost £200 million. An explosion has seriously injured three people at a residential building in Monaco. Officers are looking for a man suspected of detonating the makeshift bomb. And Britain's train operators are on course for a 10-year high in diesel spending. Campaigners who want more lines to be electrified warn the rising costs could be passed on to passengers and taxpayers. From Sky News, I'm AJ Walsh.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
6: Feel that? That little buzz of excitement? That's the weekly flutter. With chances to win up to £10,000, enter British Heart Foundation's lottery for a thrill with goodwill behind it. Because when you play, it helps fund life-saving research. So go on, keep playing, keep winning, keep us beating. Search BHF Lottery. Gamble responsibly, over 18s only. T's and C's apply. Please see our website for more details. British Heart Foundation is a registered charity.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं मौसम की। और आज मौसम में घने बादल छाए रहेंगे और कभी कभार ये बरसेंगे भी। हल्की फुल्की सनशाइन आज देखने को मिल सकती है, लेकिन मौसम ऐसा ही आज रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में आज 24 डिग्रीज तक जाएगा एंड मिडलैंड्स में 21 डिग्रीज के आसपास ही रहेगा।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
7: Leica Gold.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: Leica Gold. Chintan.
0: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। आज है 30 जून, जून महीने का आखिरी दिन। 11:03 हुए हैं और ये समय निर्धारित है चिंतन के लिए। चिंतन यानी कि आज का विचार, जिसे आप रवि जी के साथ सुनते हैं, लेकिन आजकल वो छुट्टियों पर हैं, इसलिए उनकी जगह मैं ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चिंतन की, और सुनाती हूँ आपको एक कहानी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है। और ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है आनंद। आनंद जो था बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार था, पर दुख की बात यह थी कि पिता का साया बचपन में ही सर से उठ गया था। इसलिए उसकी माँ सावित्री सिलाई कढ़ाई करके दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाल पोस रही थी और ऐसे ही उसने आनंद को बड़ा किया। आनंद का एक ही सपना था, एक बड़ा सिविल सर्वेंट बनना, आईएएस ऑफिसर बनना और अपनी माँ को दुनिया का हर सुख हर खुशी देना, क्योंकि उसने देखा था अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए, तिल तिल अपनी खुशियों को मारते हुए, अपने मन को मारते हुए। इसलिए वो हमेशा यही सोचता था कि मैं एक ऊंचे पद पर जाऊंगा और मेरी माँ ने जितने भी दुख उठाए हैं, एक भी दुख तब मैं अपनी माँ को नहीं होने दूंगा। और इसी अपने प्रण को पूरा करने के लिए आनंद ने रात दिन एक कर दिए थे। आईएएस की परीक्षा की तैयारी में और मेहनत इतनी की कि पहले दो प्रयासों में वो इंटरव्यू तक भी पहुंच गया, लेकिन कुछ नंबरों से रह गया। और जब तीसरा साल आया तो उसे लगा कि अब तो मैं जरूर इसको क्लियर कर ही लूंगा और उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। रिजल्ट वाले दिन का इंतजार बेसब्री से आनंद को था और जब रिजल्ट आया तो उसने कांपते हुए हाथों से लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढा। उसने ऊपर से नीचे तक तीन बार लिस्ट देखी लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उम्र की सीमा खत्म हो चुकी थी, पैसे खत्म हो चुके थे और अब उसकी उम्मीदें भी। वो कमरे का दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा उसने अपनी माँ के सालों के बलिदान को मिट्टी में मिला दिया। सब कुछ पूरी तरह से बिगड़ गया और जो सपना वो सालों से देख रहा था वो सपना पूरा हो ही नहीं पाएगा। और बस उसे लग रहा था कि अब मैं क्या कर दूँ, मैं कैसे करूँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊँगा। बहुत हताश परेशान हो चुका था आनंद और ये सब सोच ही रहा था तभी अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला। माँ हाथ में पानी का ग्लास लेकर अंदर आई और आनंद ने रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए, कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। माँ आपकी सालों की मेहनत, आपके फटे हुए हाथ, पुराने कपड़े जिनको मैं बदलने का सपना लिए चल रहा था, कुछ भी नहीं हो पाएगा माँ, सब बर्बाद हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन बिल्कुल विफल है, बेमाने है। सावित्री ने आनंद के सिर पर हाथ रखा, उसे उठाया, आंसू पोंछे और बड़े प्यार से गले लगाया। माँ बोली, बेटा मैंने तुझे अफसर बनते हुए देखने के लिए पैदा नहीं किया था, इसलिए नहीं पाला था कि तू बड़ा होके अफसर बन जाएगा। जब तक तू सुरक्षित है मेरा सब कुछ सलामत है। कहते हैं ना, बात तब बिगड़ती है जब इंसान अंदर से हार मान ले। तू मेरा बेटा है, मेरी सबसे बड़ी जीत तो तू खुद है। मां के इन शब्दों ने और उसके निस्वार्थ प्यार ने आनंद को अंदर के सारे दर्द को एक अलग ही एनर्जी ऊर्जा में बदल दिया और उसे समझ आया कि जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा की मोहताज नहीं होती है। माँ ने उसे बहुत समझाया, उसने रोना बंद किया और एक नई शुरुआत की। उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसको पढ़ाने का, उसका जो पढ़ाने का तरीका था और उसका जो एक्सपीरियंस था वो इतना शानदार था कि देखते ही देखते उसका छोटा सा कोचिंग सेंटर एक बड़े संस्थान में बदल गया और अगले कुछ सालों में आनंद ने सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर अफसर बना दिया था। और एक दिन बड़े समारोह में, जहां आनंद को शिक्षा के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा था, तो उसने माइक पर कहा कि जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना टूटा था और जब मुझे लगा था कि सब कुछ बिगड़ गया था, उस दिन मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपनी माँ के साथ और उसी की वजह से हूँ। तो ये अवार्ड आज लेने का हकदार मैं नहीं, बल्कि मेरी माँ है। कहते हैं ना, अपनों का साथ ही हमें दोबारा जीना सिखाता है। कभी कभी हम किसी एक नाकामी को अपनी जिंदगी का अंत मान लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे माता पिता या हमारे सच्चे शुभ चिंतक हमारे साथ हैं, तब तक यकीन मानिए कुछ भी बर्बाद नहीं होता। उनकी मोहब्बत और हमारा हौसला बिगड़ी हुई बात बना देता है और जीवन को एक खूबसूरत मोड़ भी दे सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए।

0: राजेश रोशन के म्यूजिक पर जुर्म फिल्म से था ये गाना जो 1990 में आई थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। वैसे ये एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच भी है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई बात बिगड़ जाती है या कोई संकट आ जाता है या जब राहें धुंधली हो जाती हैं। तब दोस्त पीछे हट जाते हैं, घर वाले पीछे हट जाते हैं और खुद पर भी भरोसा उठने लगता है। और ऐसे ही एक अकेले पल में, निराशा के पल में, जब कोई आकर धीरे से आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो टूटते हुए हौसलों को मानो एक नया जीवन मिल जाता है। और ये कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका सच्चा दोस्त हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, या फिर आपके भीतर छुपा हुआ खुद का आत्मविश्वास। जब तक ये साथ है ना, तब तक आपकी बात भी नहीं बिगड़ सकती और आपको कोई हरा भी नहीं सकता। देखिए किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि जब राहें धुंधली हो जाएं, जब अपने भी पीछे हट जाएं, जब हर कोशिश नाकाम लगे और हर मंजिल एक ख्वाब लगे, तुम रुकना मत, तुम थकना मत, किसी भी बिगड़ी बात से डरना मत। माना आज अंधेरा भारी है, पर देखो अभी सांसें जारी हैं। कोई तो होगा इस दुनिया में जो खड़ा रहेगा तन्हाई में, जो थाम के हाथ ये कह देगा, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ। यही था आज का चिंतन और यही था आज के चिंतन का मैसेज, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। थैंक यू ढेर सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू शर्फून अर्जुन जी, थैंक यू राजेश जी, कहते हैं चिंतन बहुत ही अच्छा था। और आपने लिखा है कि कभी कभी हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो मायने नहीं रखती। आपके प्रियजन का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद आपको चुनौतियों से उभरने और नए रास्ते खोजने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू शुमिला मंगर, दिव्या जी, राजकुमार जी, आपको चिंतन पसंद आया। थैंक यू शेखर आनंद जी, आपका भी यही कहना है कि नेवर गिव अप, सब कुछ अच्छा होता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भारत में सत्यनारायण सैनी हमारे साथ है, रागिनी जी, रंजन जी, मृदु जी, जासू जी, राजीव पटेल, बुशी जी, जगदीश जी बुशी से, रोहित जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। और चलिए बढ़ जाते हैं आगे और अब सुन लेते हैं आशा जी की आवाज़ में एक रोमांटिक सा गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि आज 1 pound आपको देगा 125 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको SBI branch online या फिर उनके Yono app के थ्रू करवाना होगा। लेकिन आज आखिरी दिन है 75 pounds का वाउचर जीतने का जब आप ट्रांसफर करते हैं 1000 pounds या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जीतने का जब आप ट्रांसफर करते हैं 2000 pounds। तो जल्दी कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आपको बताते चलें कि आज मैच होने वाला है किसके बीच में। यस, आज फ्रांस और स्वीडन की टीम्स मैच खेलने वाली हैं फीफा वर्ल्ड कप का। लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिए 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये सब आपको मिल सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर ये गाना नासिर हुसैन की फिल्म से लिया था और नासिर हुसैन की फिल्म थी तो उसमें उनकी फेवरेट हीरोइन तो होंगी ही आशा पारेख और साथ में थे दिलीप कुमार। भावना जी थैंक यू। वंदना गुटका जासू जी आप कहती हैं कि ये गाना हमारे नाम कीजिए, मैंने बिल्कुल आपके नाम किया। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। जैस्मिन जी स्वागत है आपका इस शो में। और मनोज जी क्रॉयटन में सुन रहे हैं, हमारी भारतीय दीदी को चिंतन अच्छा लगा। कल्पना जी थैंक यू। रानी जी इस्लाव से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड भावना जी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और आपने बिल्कुल सही लिखा है, आजकल का ज़माना है कि नेकी कर और दरिया में डाल। और आजकल बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो ज़रूरत के दोस्त होते हैं, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन आपका भी ज़रूर एक्सपीरियंस रहा होगा कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। अगर किसी का किसी से कोई मतलब सधता है तो फौरन दोस्ती गाढ़ी हो जाती है, और जब मतलब निकल जाता है तो तू कौन मैं कौन, तू कहाँ मैं कहाँ ऐसा हो जाता है। और ऐसे लोग बहुत हैं जो मतलब के लिए दोस्ती करते हैं और मैंने उनको एक नाम दिया है कि ये मतलब के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त नहीं हैं। सच्चा दोस्त तो एक या दो ही होता है जो जीवन भर आपके साथ रहता है, आपके चेहरे पर परेशानी आते हुए वो पहचान जाता है कि आप किस बात से परेशान हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बहुत कम दो या तीन ही ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मेरी बात करने से पहले समझ जाते हैं कि ये बात ज़रूर मुझे परेशान करेगी और मुझे किसने परेशान किया। एंड आई एम सो लकी कि आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जैसे मेरे पास हैं, अच्छे सच्चे दोस्त। तो बस यही दुनिया है, क्या किया जाए, बस जीते रहिए, खुश रहिए और ऐसी ऐसी बातों को जो आपको परेशान करे बस इग्नोर करते चलिए। अगर सबके बारे में सोचने लगे ना तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब लोग आपको ज़रूरत के दोस्त बनाते हैं तो आप भी उनके ज़रूरत के दोस्त बन जाइए, क्यों उनसे सच में दिल लगाना है ना। अगर किसी से आप अच्छे से दिल लगा लेते हैं और फिर जब धोखा मिलता है तो बहुत दुख होता है, इसलिए संभल के ध्यान से। आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हो। देखिए अब लंच टाइम आने वाला है और मुझे लगता है हमारे साथी ऑलरेडी किचन में जा चुके हैं, क्योंकि भाई लंच तो 12:30-12 बजे खाना होता है लेकिन प्रिपरेशन तो पहले से करनी पड़ती है। और हमारा जो खाना है, इंडियन जो फूड है, उसको खाने में तो 2-3 और मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं लेकिन प्रिपरेशन में और बनाने में कितना समय लगता है ये वो ही जाने जो कुकिंग करते हैं। बताइए सही कह रही हूँ कि नहीं। Feel good track.
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra Podcast Update. तो आपको याद दिलाते चलें कि अगर गीतों के साथ साथ आपको बातों में भी इंटरेस्ट है तो आपके लिए है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट। और इस बार का जो एपिसोड है उसमें जो टाइटल है उसका है ट्रेडिशंस एंड ताबूज, और इसे रेडियो वाली ने होस्ट किया है जो हमारे लाइका रेडियो की प्रेजेंटर है, इवनिंग शो करती हैं 7 से 10, बड़े अच्छे गाने बजाती हैं, ज़रूर सुनिए उन्हें। और अब आपको बता दूं कि ये लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजोन पर, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर आप अवेलेबल है। कहीं पर भी जाकर आप, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
2: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: ये है
4: Leica Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
7: London. You asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
8: Lattuke halone nandala.
7: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
9: London, the wait is over.
10: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
9: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
10: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
9: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
10: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
9: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
11: Haldiram's.
12: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
13: Welcome to the jungle.
14: Film बिल्कुल फेक.
13: हमारी फिल्म आर्मी वाली.
15: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
14: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
13: और स्टार कास्ट है
14: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
16: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
14: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
17: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
18: किस लिए फिल्म में.

0: क्या प्यारा सा गीत है अनुराधा पौडवाल की आवाज में। साजन फिल्म से लिया था और इस गाने में माधुरी थी जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया था। और आनंद तोमर हमारे साथ जुड़े हैं, जय सियाराम कहते हैं तो आपको भी जय श्री राम। एंड भावना, आपने मैसेज लिखा है और ये मैसेज थोड़ा लंबा है जिसे पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर मैं आपके मैसेज को पढ़ूंगी। लेकिन मधु जी कहती हैं कि ऋतु आपने तो बिल्कुल सही कहा है कि कुकिंग करने में कितना टाइम जाता है, ये उनको कैसे समझ में आए जिनका कुकिंग से कोई वास्ता ही नहीं है, जो कभी किचन में झांकते ही नहीं है जो सिर्फ ऑर्डर चलाते हैं कि खाना ले आओ, चाय ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ तो उन लोगों को भी एहसास दिलाना चाहिए कि भैया ये सिर्फ जो बोल देते हैं ना, सिर्फ बोलना बहुत आसान है, अंदर जाओ किचन में बना के देखो और उसके बाद जो क्लीनिंग और ये सब चीज़ें होती हैं उसमें कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम का काम है। कभी कभी मुझे लगता है कि खाना बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल बनाओ जो क्विक बन जाए और खा लो, क्योंकि 5 मिनट भी नहीं लगते खाना खाने में और खाने के बाद सब खत्म, स्वाद भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो क्यों इतनी मेहनत करके घंटा भर तक यू नो स्वादिष्ट खाना बनाना, खड़े रहना, ये करना, वो करना, फटाफट बनाओ और खा के छुट्टी करो और कभी बहुत अच्छा खाना है तो बाहर रेस्टोरेंट्स में इतना बढ़िया मिलता है, कभी कभार वहां जाकर खाओ, मतलब ये मेरा सोचना है
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टका।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: LEICA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 97.8 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
11: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
10: Exclusive radio partner, like रेडियो।
12: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
13: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
14: पर टिलो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
12: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं फेस्टिवल है।
15: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922 3444 24 hour line.
16: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
17: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
16: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
17: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
16: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
17: Visit kajalscouture.co.uk.
18: Location, location, location.
19: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
18: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
19: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
18: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
19: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
18: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
19: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
18: High appreciation.
19: In Dubai.
20: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
21: No more worries for me or you.
22: Southall Travel, at all protected.
23: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
24: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
23: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
24: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashback remortgage.co.uk.
23: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
25: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
26: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
25: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
26: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
25: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
26: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે. આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર્સ સાથે.
25: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
26: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
27: This Saturday, Lotto is making a guaranteed 10 millionaires. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millionaires guaranteed to be made this Saturday. New Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules apply. 18 plus.
28: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.
29: Ho jaan.

0: ब्यूटीफुल गाना और म्यूजिक से तो समझ आ ही गया है कि ये ओपी नैयर के अलावा किसी और का म्यूजिक हो ही नहीं सकता। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में ये गाना हमारी नैना शाह जी को बेहद पसंद है। नैना शाह, ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं। और इसके अलावा ढेरों मैसेजेस मिल रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, ज़रूर पढ़ूंगी। गगन जी, आपका भी मैसेज आया है, लेकिन नरेंद्र पांचाल जी कहते हैं कि ऋतु, मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि शादी के बाद हम लेडीज़ को ही क्यों खाना बनाना पड़ता है, आपको खिलाना पड़ता है बना के। तो मैंने कहा कि सारी दुनिया में कैदियों को, प्रिजनर्स को जेलर ही खाना खिलाता है, हम तो आपके कैदी हैं और आप हमारे जेलर हैं। अब बताइए इस बात को कितने लोग मानते हैं। ये तो नरेंद्र पांचाल जी का सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन क्या ये बात सच है? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। लेकिन ये मैसेज मुझे मिला है, मैं बात करती हूँ बाद में।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Sir Keir Starmer's announced road

0: सिलसिला फिल्म से था ये गाना लता जी और किशोरदा की आवाजों में, और उससे पहले सन्यासी फिल्म का गीत जिसमें लता जी के साथ मुकेश जी गा रहे थे। और हमारे जैनुद्दीन जी आपका मैसेज आया है, कहते हैं ये गाना मुझे बहुत पसंद है। चलिए ये गाना मैंने आपको डेडिकेट किया और आपके बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग मैसेजेस भी मुझे मिले हैं, तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ये मैसेज मुझे मिला है गगनदीप सिंह जी आपका। आपने लिखा है कि आपको गाने पसंद आ रहे हैं, शो अच्छा लग रहा है और आप हमेशा साथ देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने बताया है कि आपने कुछ महीने पहले ही कुकिंग शुरू की है और वो भी एक्सीडेंटली ही कहूँगी हो गई है। आपने बताया है कि आपकी वाइफ एक बार आपके कैट के लिए गलत चिकन ले आई और फिर आपने उस चिकन का चिकन टिक्का बना दिया और वो बड़ा टेस्टी बना, आपकी दोनों डॉटर्स को भी पसंद आया और तब से आप रेगुलरली कुकिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट वीक में दो बार तो आप बनाते ही हैं और आपकी फैमिली और सभी लोग उसे इंजॉय करते हैं और बच्चे भी। तो आपको कुकिंग डिफ़िकल्ट भी नहीं लगती, लेकिन हाँ क्लीनिंग पार्ट आपको पसंद नहीं है। बट चलिए आपकी वाइफ को इतनी तो हेल्प है कि आप हफ्ते में दो बार कुकिंग कर लेते हैं और वो भी टेस्टी, तो ये बहुत अच्छा है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी कहूँगी कि आप भी कभी कभार कुछ गलत सब्जी या चिकन खरीद लाइए और फिर आपके हस्बैंड भी थोड़ा कुछ ट्राई कर लें और शायद आपको भी हफ्ते में दो दिन कुछ ना बनाने की छुट्टी मिल जाए। हो सकता है ना ऐसा। तो थैंक यू गगनदीप जी, आपने ये हमारे साथ शेयर किया है। और हमारे शेखर जी कहते हैं कि भाई मैं सब काम करता हूँ, हूवर भी करता हूँ, क्लीनिंग भी करता हूँ, बर्तन भी करता हूँ, किचन में सब कुछ करता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मुझे लाउड आवाज़ में रेडियो नहीं सुनने देती। क्या बात है शेखर जी, अब आपने ऑन ईयर मुझे ये बता दिया है और मैंने भी ऑन ईयर अनाउंस कर दिया। अब आपको आने वाले दिनों में खाना मिलेगा या नहीं इसका इंतज़ाम आप कर लीजिए, क्योंकि आपने ऑन ईयर ये बात मुझसे, मतलब आपने मुझे ये बात कही और मैंने ये बात ऑन ईयर कह दी है। एनीवेज और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं जिनका जिक्र जरूर करूंगी, लेकिन पहले ये बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 125 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और आज आखिरी दिन है उस मौके को यूज़ करने का, यानी कि 75 पाउंड का वाउचर आप जीत सकते हैं जब आप 1000 पाउंड्स ट्रांसफ़र करते हैं और 1 gram गोल्ड कॉइन आपको मिल सकता है जब 2000 पाउंड से ज़्यादा आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protect.

0: नौशाद के म्यूजिक पर अपने जमाने का सुपरहिट गाना, जिसमें आवाज थी रफी साहब के साथ शमशाद बेगम की। और शमशाद बेगम हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक भी हैं, तो उनके गाने आपको हर शो में कम से कम एक तो जरूर सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। और अब कुछ मैसेजेस पर नजर डालती हूँ। ये मैसेज रोशनी जी आपने भेजा है, रोहिणी जी ने भेजा है। कहती है, राम राम जी, आपके गार्डन में दो बड़े कोरजेट लगे हैं आपके किचन गार्डन में, और जिसमें से एक के तो आपने कोफ्ते बना लिए हैं डिनर के लिए, और दूसरे को आप बेक कर रही हैं विद ब्रेड क्रम्स एंड चीज अलोंग विद खुसखुस सैलेड फॉर लंच, और आप मुझे बुला रही हैं। क्या बात है, आपकी ये डिशेस को देखकर मुंह में पानी तो आ रहा है, लेकिन आप विंसर में रहती हैं, एक घर हमारे स्टूडियो के पास ले लीजिए ना, तब जब भी बनाएंगी मैं फौरन आ जाऊंगी। लेकिन थैंक यू फॉर द इनविटेशन, और मज़े के साथ खाइए। और इसके अलावा ये मैसेज आया है जितेंद्र धनगर जी आपका। कहते हैं, ऋतु कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, और आप मुझे जब भी समय मिलता है तब सुनते हैं, और आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज आप काम पर नहीं गए हैं और आप शो को सुन रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा गाना लगा दूँ जो आपके मूड को फ्रेशन अप कर दे। ओहो हो, चलिए फिर अगला गीत हिचिन से जीतू धनगर जी के नाम पर ही कर देते हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लीजिए ये गाना हमने जितेंद्र धनगर जी आपके नाम पर किया और हम यही चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। फरीदा जी थैंक यू। शमशाद बेगम का गीत आपको बहुत अच्छा लगा। भारती दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी मिस्टर इंडिया कह रही हूँ, मदर इंडिया का गाना बहुत पसंद आया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai like a gold.
0: चलिए फिर आपको याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम, जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं और जो बहुत धूम मचा रहा है। ये सब होने जा रहा है, ये शो है 9th से 12 जुलाई के बीच में एट लंदन्स अवंतिम अपोलो, और जिसमें आशुतोष राणा रावण बने हैं, राहुल भुच्चर राम बने हैं और तरुण खन्ना ने शंकर जी का कैरेक्टर निभाया है, और कई शहरों में कई विदेश देशों में धूम मचा चुका है। और आप भी इसको ज़रूर देखने जाइए, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, ख़ास तौर पर अपने बच्चों को लेकर जाइए ताकि उन्हें भी पता चलेगा कि आखिर श्री राम कौन थे, कैसे थे, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें इतना ज़्यादा देखने का, जानने का, श्री राम के बारे में मौका नहीं मिलता, और रावण क्या था, कैसा था, तो ये सारी चीज़ें जब स्टेज पर देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और कलाकार इतने अच्छे हैं कि आई एम श्योर इसे देखने में मज़ा बहुत आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए, कहीं ये मौका हाथ से चला ना जाए।
1: ये है Like a Gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: जी, लाल बंगला फिल्म से था ये गाना, और ये गाना जाता है हमारे सारे मुकेश जी के फैंस के नाम पर। और अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी।
1: Women's cricket updates presented by Kamal Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो चलिए बात करते हैं कमल जी से। कमल जी बताइए आज क्या अपडेट्स है हमारे लिए?
3: Well, Ritu ji, I'll tell you what, aapne to suna, the World Cup has gone amazing and it's getting better and better. Now, अभी आज हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल्स है, तो फर्स्ट सेमीफाइनल विद ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और ऑस्ट्रेलिया अनबीटन, वेस्ट इंडीज अगर टर्न अप हो गए, अगर अच्छा खेले तो इट कुड बी अ वेरी वेरी गुड गेम, बट इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग के व्होएवर विंस इज अ बिग प्राइज to get in the final. Or Ritu ji, second final hamara on Thursday, which is going to be another amazing game. It is England taking the South African. So both good sides, England unbeaten, good strong side. So ye bhi mukabla bahut acha hone wala. And the standard, as I've been saying, the cricket or standard of the women cricket, just on the next level, you know, is going to get better and better. Aapko kya lagta hai aaj kaun jeetega?
0: मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन जीतेगा। मैं ये चाहती हूँ कि जो अच्छा खेले वो जीत जाए बस।
3: अच्छा, जो अच्छा खेले, तो सपोजिंग वेस्ट इंडीज अच्छा खेले पर हार जाए तो फिर क्या करेंगे?
0: जो अच्छा खेले
3: तो विनर कहेंगे आप।
0: जो अच्छा खेलेगा वो कैसे हार सकता है?
3: नहीं, बट एनीवेयर, सो देखो, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक गेम, अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग फॉर द वुमेन क्रिकेट, द टीडब्ल्यू, यू नो, द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। It's honestly grown. Like I said, we had 27,000 people on the weekend for the India game, Australia. So it's going to be bahut acha hoga. Thank you. So we'll look forward to seeing you soon.
0: Thank you. Take care. Bye-bye.
3: Bye.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो याद दिला दें कि अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल के पर दुबई की बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं। आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं डील्स के लिए। उन्हें कॉल कीजिए 02085748410 पर, और ये है सब एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Great news, Tadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Raiders Lane.
7: वेलकम टू द जंगल।
8: फिल्म बिल्कुल फेक।
7: हमारी फिल्म आर्मी वाली
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
8: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
7: और स्टार कास्ट है
8: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
11: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
12: किस लिए फिल्म में?
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
14: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code Leica10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
17: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
18: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
16: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
17: Thanks. Playtime's over. Lovely.
19: Feel the fun. Play Ojo.
18: 18 plus, gamble aware.
20: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Dutch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
21: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
22: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Ollie Brumba.
1: Hanji, gold afternoon to you. Available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home, and LaikaGold.com. Also available on a radio player app and 358th day of Laika Radio Midlands, जहाँ पे मेरे सब चाहते listeners वहाँ से सुनते हैं from all over Midlands. Midlands वालो नमस्कार, London वालो of course big नमस्कार to you too. अब हम कल्याण जी वीर जी शाह जी को आज याद कर रहे हैं on his 98th birth anniversary. Born on 30th of June 1928, and he passed away sadly on 24th of August year 2000 after quite a long illness. He was 72 years young when he passed away. That was too early, and the industry, the world, we all miss him. Anand ji bhai hamesha fondly talks about him. मैंने फ़ोन किया था उनको पूछने के लिए, लेकिन ही वॉज अ लिल बिट टाइड अप टुडे बिकॉज ऑब्वियसली कल्याण जी भाई की 98th बर्थ एनिवर्सरी पे सारी प्रेस वहाँ पे उनके पास गई है बातें करने के लिए उनकी यादें में. सो I was थिंकिंग कैसा मैं म्यूज़िक आपको सुनाऊँ आज. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद ऑल द पैपी सॉन्ग्स ऑफ कल्याण जी आनंद जी. And from the peppy songs in the second hour, when Kalyan ji bhai started solo with a film which was quite a hit musically, and then there was a song Chahe Paas Ho Chahe Dur Ho, and that was a hit song in that particular film called Samrat Chandragupt, 1959 ki baat hai. And then इन्होंने क्ले वायलिन बजाया था हेमंत कुमार जी के लिए. एंड देन देयर वाज अ फिल्म नागिन, उसमें उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया था. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट इट और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है, लेकिन आई डू बिलीव दैट ही आल्सो प्लेड द क्ले वायलिन इन द फिल्म मदारी. तो हम सेकेंड आवर में वो पुराने गाने उनके ढूंढ के निकालेंगे, पोस्ट बॉक्स 999. फिर जब से आनंद जी भाई ने ज्वाइन किया उनको, सट्टा बाजार, मदारी, छलिया फिल्म, दूल्हा दुल्हन, हिमाली की गोद में, फिर ये तो जब जब फूल खिले, दूसरी पूर्णिमा फिल्म थी, उपकार, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन गिविंग ऑल द नेम्स टू यू लाइक डॉन, जंजीर, सरस्वती चंद्र, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, ये सब. एंड ही career, it started in the early 1950s, and then 1975 mein Filmfare Award for Best Music was film Kora Kagaz. To hum unke bare mein sab kuch jante hue unke gaane sunenge, peppy songs this hour, and we shall listen to Kalyan ji Anand ji's songs. Anand ji bhai ne jab se join kiya wahan se gaane. अब तो कल्याण जी आनंद जी के गाने फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में कल्याण जी भाई सोलो, एंड देन टुगेदर एज द ब्रदर्स जॉइंड फोर्सेस एंड मेड हिट्स आफ्टर हिट्स आफ्टर हिट्स. आई विश आई हैड 8 hours टू प्ले ऑल द सॉन्ग्स टू यू, बट देन वी शैल ट्राई टू कवर इट इन द 3 hours, मोस्टली 2 hours, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत थर्ड आवर की. हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज शमशाद बेगम, तो वो भी गाना हम आपको सुनाएंगे. जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वी विल हैव फन फॉर द नेक्स्ट 3 hours.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. That means today is the last day that you can be in to win a £75 voucher every day, that is today, when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
5: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल।
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344. A 24-hour line.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: 4 days to go.
9: Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
8: Exclusive radio partner, Laika Radio Network. Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
10: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
8: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
10: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
8: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
10: Visit Kajal's Couture. Co.uk.
11: Two businesses.
12: Same town.
11: Same service.
12: One appears on page one of Google.
11: The other doesn't.
12: Guess which one gets the customer?
11: The truth is brutal.
12: The first page of Google gets the business.
11: Everyone else gets what's left.
12: So here's the real question.
11: When your customers search for what you sell, do they find you?
12: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods, Hayes.
14: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
15: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
16: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
17: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
15: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
16: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
18: Feel the fun. PlayOjo.
19: 18 plus, gamble aware.
20: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
21: Feel good track.
2: Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फिल्म है दुल्हा दुल्हन और हम याद कर रहे हैं कल्याण जी वीर जी शाह, इनकी 98th बर्थ एनिवर्सरी पे वी आर विशिंग हिम लॉट्स ऑफ मेमोरीज दैट ही हैज क्रिएटेड एंड वी आर विशिंग द होल फैमिली ऑल द बेस्ट एंड लॉन्ग लाइफ टू आनंद जी भाई ऑन अ डे लाइक दिस बिकॉज वी आर फॉन्डली रिमेम्बरिंग कल्याण जी भाई. एंड आगे जो गाना है, ये गाना इंदिवर जी ने लिखा था, आगे गुलशन बावरा जी ने जो लिखा, सुनिएगा.
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे लाइक अ गोल्ड.
0: महेंद्र कपूर जी की आवाज लता मंगेशकर जी के साथ, फिल्म परिवार 1967 की फिल्म, गुलशन बावरा की लिरिक्स और संगीत ऑफ कोर्स कल्याण जी आनंद जी. नेक्स्ट सॉन्ग रिटन बाय गुलजार.

0: क्या गाना है ना, गुलशन बावरा ने लिखी लिरिक्स और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, कैसा झूम रहा है आज समा। और आपको मालूम है मैंने सब थिएटर्स के नाम जो लिए, वहाँ पे लिबर्टी सिनेमा का नाम तो सबको मालूम है। और हमारी भावना जी ने लिखा, बोलते कि पंगानी में जो सिनेमा था, मैंने कहा लिबर्टी सिनेमा, तो हमारे लिबर्टी सिनेमा के आलम भाई हु इज़ अ ग्रेट लिसनर ऑफ लाइका गोल्ड एंड ही इज़ ऑनलाइन, एंड मैंने उनको पूछा कि कौन सी फिल्म जिसमें कल्याण जी आनंद जी का संगीत था लगी थी वहाँ लिबर्टी सिनेमा में। आलम भाई कैसे हो? सलाम।
1: वालेकुम सलाम, हाउ आर यू सर? ठीक ठाक है भाटी साहब?
0: नॉट बैड आलम भाई। मैं यही पूछना चाहता था कौन सी फिल्म लगी थी लिबर्टी सिनेमा में जिसमें कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।
1: फिल्म में तो बहुत लगी थी भाई साहब, तो उनमें से एक तो मुझे याद है, सच्चा झूठा सी लगी हुई,
0: वाओ, राजेश खन्ना। अच्छा,
1: राजेश खन्ना की।
0: तो उसमें से कोई गाना आपको याद है, क्योंकि आप तो कंटिन्यूअसली बैठते थे वहां जब शोज चलते थे।
1: जी बस वो थोड़ा टाइम जाते थे अंदर बाहर, फिर आ जाते थे।
0: अच्छा,
1: एक ही फिल्म बार बार देख के थक जाते थे। वो एक था गाना उसका, दिल सच्चा और चेहरा झूठा।
0: हो या मैंने अभी फर्स्ट आवर में जो आपको सुनाया, दिल को देखो चेहरा ना देखो, वही ना। और दूसरा कौन सा गाना था उस फिल्म का, बोलिए ना।
1: ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ये बहुत चला था गाना।
0: एक गा देना, गा देना, गा दो ना आलम भाई, एक लाइन गा दो ना।
1: आवाज बैठी हुई है यार, ठंडा पानी
0: तो बैठे बैठे गले से गा दो, मैं साथ में गाऊंगा। चलो,
1: मेरी प्यारी बहनिया
0: बनेगी दुल्हनिया, सच के
1: लेके जाएंगे, तो पता नहीं आ गया,
0: सच के आएंगे दूल्हे राजा,
1: सच के आएंगे दूल्हे राजा, मेरी प्यारी बनेगी दुल्हनिया, कुछ ऐसे था।
0: अरे शाबाश, मजा आ गया यार। लिबर्टी सिनेमा क्या जगह थी यार, बड़ा मजा आता था। मैंने हम हिंदुस्तानी फिल्म जब आशा पारेख और जॉय मुखर्जी वहाँ आए थे उस शो में जब फिल्म लगी थी प्रीमियर में, तब मैं लिबर्टी सिनेमा गया था। यस, एज अ छोटा बच्चा चड्डी में।
1: मुझे जो अच्छी तरह याद है ना, वो राजेंद्र कुमार साहब आए थे।
0: हाँ जी,
1: फिल्म माँ बाप लगी थी।
0: वाओ, क्या मेमोरी है यार।
1: माँ बाप लगे थे, वो आए थे 1950s के बाद आए थे, 60s में समथिंग आ रहा था।
0: यस, वे यू को डुगू कबीसा, बिकॉज़ यू आर फ्रॉम जमहूरी हाई स्कूल, राइट? ड्यूको क्लास्टर जमहूरी। यस, ही इज अ जमहूरियन। एवरीबॉडी, दिस इज अनदर जमहूरियन ऑल द वे फ्रॉम नैरोबी, लिबर्टी सिनेमा के मालिक। यिप्पी, थैंक यू आलम भैया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर कॉलिंग,
0: बाय बाय, थैंक यू। And that was the owner of Liberty Cinema there, you know. And there was, I mean, the whole family used to own it. And Eunice Butchery, you know that, na? Wahan pe Eunice Butchery hoti thi. They were the owners of Eunice Butchery and Liberty Cinema. Yeah!
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410, at all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: Yes, podcast update. Podcast episode 22, Pride Month. The title is Pride Month, Traditions and Taboos, hosted by Radio Wali. What she's talking about in this episode, we explore the realities of being part of the LGBTQ plus community in a world that is still learning to understand. Yes, catch up with her. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। लाइका गोल्ड।
3: Gold afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com. Come.

0: जहाँ जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
4: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
3: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 pounds.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.com.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: Welcome to the jungle.
9: Film बिल्कुल fake.
8: हमारी film army वाली.
10: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
9: Danger एकदम real और survival skills zero.
8: और star cast है.
9: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
11: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
9: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
12: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
13: मैं किस लिए फिल्म में?
14: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
15: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
16: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 अपनी फैमिली को सिक्योर करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444
17: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy three nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another three nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
18: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. Ya visit kijiye minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
19: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या गाना बनाया कल्याण जी आनंद जी ने, रखवाला फिल्म 1971 की। अगला गाना जो है द नेक्स्ट सॉन्ग इज माय पर्सनल फेवरेट, जो मैंने बचा के रखा था, किशोर दा ने गाया है अरे ओरे, 1968 की सुहाग रात फिल्म, लिखा है इंदिवर जी ने। सुनिएगा, लुत्फ उठाइएगा।
1: Like a Radio 90s, Like a Radio Punjabi, Like a Gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.

0: क्या गाना, क्या गाना, ओ माय गॉड, दोनों गाने एवरग्रीन। आई मीन व्हेन यू टॉक अबाउट कुर्बानी, तो ये कवाली तो इज एन एवरग्रीन थिंग। एंड नॉट ओनली दैट, कल्याण जी, आनंद जी, दोनों को याद करते हुए कल्याण जी भाई की 98th बर्थ एनिवर्सरी पे हमने ये गाने सब आपको सुनाए। और दूसरा गाना जो था फिल्म जंजीर का, और जंजीर का सबसे पॉपुलर गाना तो आपको मालूम ही है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, लेकिन बहुत बार ये सुनाई दिया गया है, तो मैंने कुछ ऐसे गाने चूज़ किए जो विच आर रेयरली प्लेड काइंड ऑफ थिंग, यू नो। एंड हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज़ शमशाद बेगम। अब शमशाद बेगम जी ने कल्याण जी आनंद जी के लिए गाया था क्या? ऑफ कोर्स गाया था, फिल्म है ब्लफ मास्टर, उसका गाना मैंने चुन के रखा हुआ है आपके लिए। और आगे जाते हुए हम बात करेंगे हमारे कमल प्रभाकर जी से, to find out what action is going on today with the cricket match, women's cricket updates. And uske baad hum dusre do char aise kaise chatpate gaane aapko sunayenge, interesting gaane jisse you'd keep on tapping your feet while as you have done in the last 2 hours. Yes, acche acche messages aaye mere ko, thank you very much. एंड दिनेश पोपट जी, आपने पूछा कि मुझे पंगानी याद नहीं आ रहा है, यू नो आप जहां नगारा से निकलते थे एंड नगारा से जाते हुए यू गो डाउन टूवर्ड्स पार्कलैंड, तो पार्कलैंड जाते हुए द फर्स्ट पार्कलैंड जो होती है उसके पहले राइट टर्न आता था फॉरेस्ट रोड का, और फॉरेस्ट रोड के एंड तक पास्ट सिख यूनियन एंड यू एंड अप इन पंगानी एरिया जहाँ पे लिबर्टी सिनेमा था, वहाँ से पंगानी के बाद आता था मथारी वैली, दैट्स मथारी हॉस्पिटल, एंड देन थीका उस रास्ते पे। सो इफ़ यू डिडंट नो वेयर पंगानी वाज, देन आई हैव जस्ट टोल्ड यू लिबर्टी सिनेमा वाज इन पंगानी। आगे जाते हुए, दिस इज़ ऑल फॉर वन इंचीज टुडे, आई एम सॉरी दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड माई लिंगो, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट देन दिस इज़ नॉस्टैल्जिया। I was born in Kenya and my heart rohoyangu iko ukotu and my heart is still in Kenya.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 124.8 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch. Today is the last day and you can be in to win a £75 voucher today, and when you send over £1,000 and also one gram gold coin when sending over £2,000. DNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: So we are into the round of 32. That's the knockout stage. And knockout meaning to say, wow, there are major upsets. Germany out, Netherlands out. And today, Cote d'Ivoire versus Norway. And it's Haaland, you know what I mean. And France versus Sweden at 10 p.m. 6 p.m. it's Cote d'Ivoire versus Norway. And 10 p.m. France versus Sweden. And Ratko 2 baje, Mexico versus Ecuador. Now, don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Yeah, Leica Gold.
4: Leica Gold. Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
8: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज?
9: डिस्कवर the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
10: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
9: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
10: At all protected.
11: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
12: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The A4 Bath Road still closed out of town from Henley's roundabout to Jolly Wagoner's roundabout. It's due to a police incident, traffic queuing in the area. A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. The A406 North Circular Road queuing in both directions as you head in towards the Hangar Lane Jarrah today. And there's congestion on the A316 Chertsey Road westbound as you head from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout. To the Tube and severe delays on the Bakerloo line between Queen's Park and Elephant and Castle is due to an operational incident, and severe delays on the Piccadilly line, that's due to a passenger illness on a train at Turnpike Lane. That's your latest traffic and travel.
0: This is Like a Gold.
2: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
3: Latuke halone nandala.
2: At Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: 4 days to go.
8: Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल Auto protected.
10: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
11: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
10: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
12: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। आज ही एक्शन ले 02089072444।
13: SonaTours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sona Tours. Call 0208 951 0111.
0: Next, a
14: Ashwini, in for Anisa Nasir on the evening show on Like a Gold.
15: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका और मेरा साथ। पूछें आप सब से, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना। ट्यूसडे खत्म, इवनिंग हो गई है, तो टेरिफिक ट्यूसडे आप और हम मना रहे हैं साथ यहीं पे। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, मेरे सारे के सारे धुरंधर आ रहे हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। एंड हमेशा की तरह एक सवाल तो पूछूंगी, थोड़ा गहरा हो सकता है आज का सवाल आप सबके लिए। तो सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ वॉट वुड यू से टू 20-year-old ऑफ yourself, ओके? आप खुद जब 20 साल के थे, ऐसी कौन सी हिदायत आप अपने आप को देना चाहेंगे? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 20 साल की अश्विनी को बस यही कहना चाहूंगी कि किसी के वैलिडेशन के लिए मत रुकना, ओके? बिकॉज वैलिडेशन देने वाला इंसान जो है, क्या सचमुच उसे वैलिडेट करना आता है? अपने आप को खुद तुम ही वैलिडेट करो, ओके? अपने आप की कीमत तुम खुद ही समझो। तो ये मेरा मैसेज है 20 साल की अश्विनी यानी अपने आप के लिए। आपका अपना मैसेज खुद के लिए क्या है? थोड़ी गहरी बात है, टाइम ले लो, एक घंटा है, क्योंकि ये भी चल तो हमारा पूरा एक घंटे चलता है ना। और कुछ ही देर बाद किसी लाइफ थ्योरी पे बात करेंगे। गाने पसंद आ रहे हैं? चलिए एंजॉय करते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 124 Indian rupees and 80 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Arbhang ka rang jama ho chaka chak Hir lo paan chaba
3: Oh, mm, mm, mm. Aha.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Laika Gold.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है। नियरली अच्छा चलो ठीक है, बोल देते हैं ना कि 2 सेकंड। हाँ आ गया, देखो 7:30, कुछ सेकंड्स बाकी थे इसलिए मैं ऐसी नियरली कर रही थी। इट्स 7:30, आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। टेरिफिक ट्यूसडे मना रहे हैं आप और हम। कोई अगर पहली बार सुनेगा तो बोलेगा पता नहीं क्या यार टेरिफिक ट्यूसडे, मतलब क्या ही टेरिफिक होता है। अरे भाई साहब मैडम, बहुत कुछ टेरिफिक होता है यहाँ पे। और जो टेरिफिक चीज़ अब हम बताने वाले हैं, दैट इज़ लाइफ थियरी। हर रोज़ ही हम किसी न किसी थियरी के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द फोर बर्नर थियरी। अगर इस थियरी के बारे में जानते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिवीजन होने वाला है। और अगर नहीं जानते हैं ध्यान से सुनिएगा। फोर बर्नर थियरी, जैसे हमारे पे फोर बर्नर गैस होते हैं, जैसे स्टोव होते हैं वैसे फोर बर्नर। तो देखिए हमारी ज़िंदगी के, हम ह्यूमंस की लाइफ के जो चार बहुत ही क्रूशल फैक्टर्स हैं वो है हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ एंड वर्क। अब कहा जाता है कि ज़िंदगी में जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना है तो इन चारों बर्नर्स को आप एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। ओके, तो जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको हर टाइम पे अलग अलग बर्नर्स को चूज़ करना पड़ता है, जिस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी होती है उस हिसाब से। पर कहा जाता है कि किसी दो ही चीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं, आइदर फैमिली फ्रेंड्स या फिर हेल्थ वर्क या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए। पर ये ज़रूरी नहीं कि किसी ने कहा कि बस वर्क और फैमिली को मैंने चूज़ कर लिया, मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे हेल्थ नहीं चाहिए। हाँ फैमिली, योर रिलेशनशिप्स विद योर स्पाउस, चिल्ड्रेन एंड एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, योर सोशल लाइफ, नेटवर्किंग एंड बॉन्ड्स आउटसाइड ऑफ योर इमीडिएट हाउसहोल्ड, हेल्थ, आपकी फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशन, मेंटल वेलनेस एंड आपकी नींद, वर्क, योर प्रोफेशनल गोल्स, करियर एम्बिशंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जिस इंसान को जिंदगी में अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है, ओके, सक्सेस केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं होता है। सक्सेस की परिभाषा अलग अलग है, इट इज़ सब्जेक्टिव, हर इंसान अपने हिसाब से सक्सेस को नापता तोलता है। तो फोर बर्नर थ्योरी में जब कहा जाता है कि केवल दो ही किसी बर्नर की तरफ ध्यान दें तो ज़रूरी नहीं है। देखिए हम लोग जब तड़के डालते हैं ना सब्जियों में, दाल में, तो ऐसा थोड़ी कि वो जो स्टोव है, जो बर्नर स्टोव है, उसकी पूरी जो स्पीड हम लगा के रख देते हैं, पूरे पावर में रख देते हैं। कभी हम गैस को सिम करते हैं, कभी मध्यम रखते हैं और फिर गैस को जो है वो स्टोव को फुल ऑन कर देते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब जब जिस बर्नर को, यानी चाहे फिर फैमिली हो, फ्रेंड्स, हेल्थ या वर्क, जब टाइम जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस हिसाब से कम ज़्यादा नाप तोल के अपने ज़िंदगी की गाड़ी जो है खूबसूरती से आगे बढ़ाइए। दिस इज़ फोर बर्नर थियरी। समझ में आ गया होगा आई एम श्योर आप सभी के कि कौन से बर्नर का कब कब इम्पोर्टेंस आपको लाइफ में रखना चाहिए। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, मुझे लगता है कि हेल्थ आपकी बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है ना। और जब आप वर्क में लगे हैं तो ऑब्वियसली फैमिली में जो सेकेंड मेंबर होता है, जो सारी चीज़ें संभाल लेता है, यार तुम जाओ मैं देख लूँगी या मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, ये वाला जब होता है ना, ये फैक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि नहीं 50-50 होना चाहिए। नहीं यार ऐसे नहीं होता ना, 80-20 होता है, कभी 70-30 होता है, कभी 40-60 होता है। कि आज अगर 60% वाइफ ने संभाली चीज़ें तो 40% हस्बैंड संभाल ले, कल को 40% के जगह पे वाइफ खुद संभाल ले ना। दिस इज़ व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल अबाउट। नाउ दैट वॉज फोर बर्नर थियरी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। यादों की बारात में, आई हाय आई जस्ट लव दिस ट्रैक, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, तुमसा नहीं देखा। इसमें ना कुछ तो हिचकोले टाइप लगता है मुझे, देख को कसम से एंजॉय करिए।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी, यादों की बारात।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

ही चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम ही चलोगे हाथ मलोगे रूठ के

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है।
1: इट्स 46 मिनट पास 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। सूरज फिल्म से सुनाया ये बहुत ही मेलोडियस ट्रैक आप सभी को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। एंड ये वाला गीत शादियों में जब बैंड वाले कितना प्ले करते हैं ना, आई रिमेम्बर। और पहले जब शादियों की कैसेट्स बनती थी एंड दुल्हन की एंट्री होती थी, अब तो दुल्हन की एंट्री तो नाचते गाते आए हाय धूमधड़ाका होता है, लेकिन उस टाइम पे ये गाना ज़रूर लगता था, बहारों फूल बरसा। तो जिनके जिनकी शादियों में ये गीत बजे भाई, ये गीत अपने नाम कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटिफुल ट्रैक। लिरिसिस्ट जब लिखते हैं, मुझे कई बार ये एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्या फीलिंग होती होगी उनके मन में, यू नो, कितनी बार ऐसी चीज़ें होती कि आप हर चीज़ थोड़ी कोई आप महसूस कर पाते हो, लेकिन इतनी सुंदर तरीके से लिखना, ओ माय गॉड, वी ऑल आर सो ब्लेस्ड ना कि हमें इतने सुंदर लिरिक्स सुनने मिलते हैं। ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone. For one pound you'll get 125.35 Indian rupee, 368.69 Pakistani rupee, 445.54 Sri Lankan rupee, 163.3 Bangladeshi taka, 84.97 Afghani, 171.64 Kenyan shilling, 1.32 US dollars. Leica
2: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.81 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: आइए आइए आइए, हमारे लेट अटेंडीज आ रहे हैं, बिल्कुल आइए, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाइए। अच्छा, अब इस आवर का आखिरी गीत जो मैं सुना रही हूँ, दैट गीत इज डेडिकेटेड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मेरी तरफ से आप सबके लिए, एवरी इंडिविजुअल, दुनिया जहाँ में आप जहाँ पे भी मुझे सुन रहे हैं, ये गीत आप सबके लिए मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरी तरफ से। किशोर कुमार की आवाज़ में आ गले लग जा फिल्म से तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, है ना, समझ में नहीं आता है कि नाता क्या होता है, लेकिन बन जाते हैं ये रिश्ते और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे होते हैं रिश्ते। और रिश्तों में ना मुझे एक चीज़ पता है कि कहीं हमें ना वो लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से जब हम मिलते हैं, जुलते हैं, जुड़ते हैं, वो बाउंड्री कहाँ क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये तो हमारी अपनी टेक होती है।
2: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a gold.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Danube, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit kajalscouture.co.uk.
9: Welcome to the jungle.
10: Film bilkul fake.
9: Hamari film army wali.
11: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
10: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
9: और स्टार कास्ट है
10: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
12: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
10: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
13: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
14: किस लिए फिल्म में.

0: इज इट ओनली मी जिसको लग रहा है कि हम सभी जो है ना बहुत चहक रहे हैं इस सप्ताह, क्योंकि टेम्परेचर जो है 20s में है, तो हम लोग बड़े खुश हैं. ओके, और आपकी इस खुशी को दुगनी करता है आपका अपना लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. इस आवर का आगाज हमने किया था दुश्मन फिल्म से, एंड लेट मी टेल यू दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, आवाज दो हमको. सेकेंड ट्रैक कोई हसीना जब रूठ जाती, भाई जहाँ जहाँ जिसकी जो भी हसीना रूठी हो ना उनको कह देना अश्विनी ने हमारी तरफ से तुम्हारे लिए प्ले किया था. सो दैट सॉन्ग वॉज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू. ओके, 8:14, 30th of June. जून ख़त्म, जुलाई आ रहा, बाबा नया नया महीना आ रहा है. तो किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, बहुत सारे सेलिब्रेशंस, कुछ खुश खबरियाँ, कुछ रियलिटी चेक्स. आप लोगों से गपशप करते हुए बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिलता है. आप लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा आप लोग हमें बना लेते हैं, और कहीं ना कहीं हम जब 3 घंटे यहाँ पे आके इस शो को करती हूँ मैं, तो मुझे ये ज़रूर एक रहता है कि जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, है ना, तो उनकी तरफ से जब मुझे मैसेजेस नहीं मिलते हैं तो मुझे भी फिक्र होती कि सब ठीक है ना, आई ओके. एंड जैसे आते से बिल्कुल जब अटेंडेंस रजिस्टर खुल जाता है और आप लोग जब हमें आशीर्वाद देते हैं, आप लोग बेस्ट विशेस देते हैं और बताते हैं कि कितना इंतज़ार हो रहा था इस शो का, तो बस ऊपर वाले की तरफ देख के एंड स्टूडियो की तरफ देख के आई जस्ट से थैंक यू. ग्रैटिट्यूड में होना चाहिए, है ना. एंड इस ज़िंदगी को जीते समय ना एक चीज़ जो मुझे ध्यान में आती है वो ये है कि ऊपर वाले ने हमको सबको बहुत कुछ दिया है. देखिए आज लंदन में हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं, कई लोगों के जीवन में लंदन के बारे में सिर्फ उन्होंने पिक्चर्स देखी होंगी, रील्स देखी होंगी. आज हम यहाँ पे इस शहर में रहते हैं, बहुत सुंदर है हमारा ये शहर और मुझे ये शहर ना बहुत अच्छा लगता है. मैं हमेशा कहती हूँ सबसे, जैसे कहते हैं ना लोग कि बम्बई सबको देता है, मुंबई सबको देता है, जो भी आप मांगो उस शहर से, आई थिंक लंदन उससे और ज़्यादा 10x आपको चीज़ें देता है. कोई भी शहर, कोई भी वास्तु जहाँ आप काम करते हैं, वो सारी चीज़ें ना आपको देने के लिए होती है. तो ज़िंदगी में सिर्फ रिसीवर ना बने. ओके, देखिए आप जब सांस अंदर लेते हैं, व्हेन यू इनहेल यू डू एक्सहेल, राइट. अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रही हूँ, बस 10 मिनट सिर्फ इनहेल करके बैठो, एक्सहेल नहीं करना है, आप कहोगे अरे ना ना ना ये नहीं हो सकता. सो व्हेन यू हैव गुड पीपल इन योर लाइफ, व्हेन यू हैव गुड थिंग्स इन योर लाइफ, व्हेन यू हैव लर्न समथिंग गुड, तो वो जिंदगी में दूसरों को देते चलो. अश्विनी जी बहुत हो गया आज का ज्ञान, चलेंगे आगे. कश्मीर की कली से सुना रही हूँ एक फैंटास्टिक ट्रैक. अगर आप दीवाने हैं तो बादल के साथ में आप भी दीवाने बनने ही वाले हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 124 Indian rupees and 80 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's

0: Football Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: Well, FIFA World Cup में नेदरलैंड्स और मोरक्को के बीच मैच हुआ. मोरक्को विंस बाय 3-2. आइवरी कोस्ट एंड नॉर्वे भी मैच हुआ. फुल टाइम हो चुका है एंड गेम इज ओवर. यार मैच क्यों बोलती हूँ पता नहीं, इतनी क्रिकेट की आदत हो गई है मुझे. नॉर्वे ने 2 गोल दागे हैं और आइवरी कोस्ट ने केवल 1. फ्रांस एंड स्वीडन के बीच में गेम शुरू होगा रात 10 बजे. एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15-मिनट फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: So all those divanas and divanis, did you love this track? Kashmir ki kali se Mohammad Rafi aur Asha Bhosle ki awaaz mein sunaya tha aap sabhi ko ye geet. अगला गीत कौन सा आने वाला भाई? इमोशन ऑफ द डे है तो टेरिफिक ट्यूसडे के लिए कौन सा गीत सुनाऊंगी बताऊंगी उसके बारे में. लेकिन पहले बात करते हैं कुछ एक्सीडेंटल इन्वेंशंस के बारे में. तो क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन जो है, इन 1945 इंजीनियर पर्सी स्पेंसर वाज वर्किंग ऑन रडार टेक्नोलॉजी व्हेन ही नोटिस्ड अ कैंडी बार इन हिज पॉकेट हैड मेल्टेड एंड ही प्लेस्ड द कॉर्न कर्नल्स नियर द रडार ट्यूब एंड मेड द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ माइक्रोवेव पॉपकॉर्न. है ना, हम सभी माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बना सकते हैं. ये ध्यान में कब आया? 1945 में पर्सी स्पेंसर जी ने भाई बनाया, तो तब से माइक्रोवेव आया. नाउ पोटैटो चिप्स. इन 1853 अ फ्रस्ट्रेटेड शेफ नेम जॉर्ज क्रम वॉज ट्राइंग टू अपीज अ पिकी कस्टमर हु केप्ट सेंडिंग हिज फ्राइड पोटैटोज बैक फॉर बींग टू थिक एंड सॉकी. अब इनको आया गुस्सा. इन्होंने क्या रहा है यार, इनको ना एकदम पतली से थिन से पोटैटो की ना अभी इनको मैं कोई चीज़ बना के खिलाता हूँ. बस अब इतनी थिन स्लाइस उन्होंने पोटैटो की कट की, उसे फ्राई किया, तला वाला देखा तो इतना क्रिस्पी. उन्होंने कहा रुको इस पर ना नमक वमक डाल के भी मैं सबने को ये खिलाता ही हूँ. एंड दैट बिकेम पोटैटो चिप. पोटैटो चिप्स और पोटैटो वेफर्स का ना मतलब वो कहानी, वो दुनिया ही अलग है. सो आई कम फ्रॉम अ कॉलोनी जहाँ पे 40 houses 40 families होते थे. एंड हमारे बचपन में किसी के यहाँ पे भी बर्थडे होता था तो ये जो पोटैटो चिप्स हम यहाँ पे कहते हैं उसे भारत में कहा जाता है पोटैटो वेफर्स. तो वेफर्स एक प्लेट में समोसा और केक का एक पीस. एंड हम बच्चों को लगता था कि जन्नत मिल गई भाई हमको, मतलब वो समोसा भी आ गया एंड वो वेफर्स. वेफर्स का एक अलग ही स्वाद है. आपको पता है क्रिस्प को क्रिस्प क्यों कहते हैं? एक तो थिन स्लाइस है ना. देखो बात करते करते मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक्टिव हो गए. ओके. तो ये जो क्रिस्प है ये एक तो इतनी थिन होती है, आप इसे डालते हैं अपने मुंह में इस क्रिस्प को, इट मेल्ट्स. ओके, मेल्ट होने के बाद में ख़त्म. अरे कहाँ गई पता ही नहीं, लेकिन दैट स्वाद लिंगर्स. जैसे द इवनिंग शो विद अश्विनी का जो एक जायका आपके साथ रहता है दूसरे दिन इवनिंग तक, शाम 7 से 10 मंडे से फ्राइडे रहता है आपका मेरा साथ. एंड आप सभी को इमोशन ऑफ द डे में सुना रही हूँ महबूब की मेहंदी से, इतना तो याद है मुझे.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन. In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
5: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
7: Lattuke halone nandala.
5: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
8: Welcome to the jungle.
5: Film bilkul fake.
8: Hamari film army wali.
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
8: स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
11: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
12: किस लिए फिल्म में?
13: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
13: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
12: गारंटेड
13: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
12: फोन 02085748410.
13: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.
0: Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Like a
0: gold. Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
3: Women cricket updates के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं कमल प्रभाकर जी के पास, जो हैं हमारे क्रिकेट करेस्पोंडेंट. कमल जी, मौसम का तकाजा और वहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कैसे हैं आप?
4: अभी तो हम ग्राउंड में नहीं है, बट क्राउड बहुत है, क्राउड जा रहा है. बट वी हैड अ ग्रेट गेम. तो गेम एज यू नो इट वाज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस, दे हैव वन, दे हैव बीटन वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज डिडंट हैव इनफ स्कोर, तो यू नो दे जस्ट यू नो दे प्लेड अ गुड गेम. बट ऑस्ट्रेलिया जो फील्डिंग ग्रेट, bowling great, catching great, catching win you matches, and it was fantastic to see them in the final. So congratulations to them. And then we got a game on Thursday, which we got England going to play South Africa. The winners of that goes into the final. So let's see who does that. But now I have a surprise for you.
3: Mm-hmm.
4: I have the manager, the coach, the manager and coach of Rajasthan Royal with me standing here. I'm going to give him the mic and he's going to talk to you for a couple of seconds regarding cricket Rajasthan. And he's the one who's got this superstar, you know, Suryavanshi, the 14-year-old, the king of, next king for cricket. So I just like to introduce you to Romy ji.
3: Romy ji, namaskar. Laika Gold Radio pe swagat hai aapka. Kya kehna chahenge aap?
5: Hello.
3: Hello. Hello, Romy ji. Ji.
5: हेलो, थैंक यू वेरी मच. अभी एक तो इंग्लैंड में मौसम चल रहा है वर्ल्ड कप का, वुमेन्स वर्ल्ड कप का, और राजस्थान रॉयल, हम सभी हर बार, आपको पता होगा आईपीएल में भी हम एक मैच वुमेन्स को डेडिकेट करते हैं
3: जी.
5: तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल की तरफ से मैं सारी जो खिलाड़ी हैं और साथ ही देखने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ.
3: थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अपकमिंग मैचेस. और आपको लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से और मेरा नाम है अश्विनी, मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं.
5: थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच.
3: थैंक यू जी.
4: हाँ जी, सो दैट्स अपडेट्स ऑल डन. सो वी विल टॉक टू यू टुमारो, नॉट टुमारो, वेल डे ऑफ, बट वी विल टॉक टुमारो एंड गिव यू ऑल द अपडेट्स ऑन थर्सडे जी.
3: लुकिंग फॉरवर्ड कमल जी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और हमें ऐसे ही बढ़िया अपडेट्स देते रहिए. यहाँ पे हम खुशी से उछलते रहते हैं जब हमें अपडेट्स मिलते हैं. टेक केयर, बाय बाय.
4: थैंक यू सो मच. बाय बाय.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: This is Leica Gold.
6: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
3: पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 22, प्राइड मंथ, ट्रेडिशंस एंड टैबूज, होस्टेड बाय मेरी पड़ोसन रेडियो वाली आ गया है. आप इसे ज़रूर देख सकते हैं. एंड इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ों पे बातें हुई हैं. गेस्ट शेयर देयर जर्नीज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ बुलिंग एंड नेम कॉलिंग दे फेस्ड वाइल ग्रोइंग अप. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
6: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: विजिट travelhubworld.com
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ एप्टा बॉन्डेड Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
9: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
9: Visit Kajal's Couture
10: .co.uk Hi, hello, kecho, mucho, kechi, dawe, ana, ashu, tego, arara, public demand, hariti, ahi, nahi, chu, London, maru, nau, natak, lai, ne, patni, premier league, etle, ke, PPL, yes, from 3rd July till 12th of July, wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows, yaad rakhjo,
11: Patni Premier League shows at Trisleep, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 0794756197.
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
12: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
14: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना
15: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान On this week's Leica Extra podcast, Radio Wally marks Pride Month, Truth and Taboos.
16: I felt like I had to get tougher skin from quite a younger age. But I think also like getting bullied, not bullied, but like name called, you kind of have to build that skin layer. Then like, you know, you have that family layer where you're a bit, you feel like you're a bit different. So you build all the skin layers and you build more and more layers.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Like our gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 125.34 Indian rupee, 368.7 Pakistani rupee, 445.54 Sri Lankan rupee, 163.33 Bangladeshi taka, 84.86 Afghan Afghani, 171.63 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.62 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट्स, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को ये पता है या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता थे, और जब भी मुझे कोई नई चीज़ पता चलती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि मोर पीपल ओन मोबाइल फोन्स देन टूथब्रशेस? टूथब्रश नहीं है, मोबाइल फ़ोन है। अब ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली सर्वे की जाती है, वहाँ से मैं इस चीज़ें आप लोगों के लिए ढूंढ के लाती हूँ। 30,000 ट्रीज आर कट डाउन एवरी डे टू सप्लाई द वर्ल्ड्स टॉयलेट पेपर। ओके, कैनेडा हैज़ मोर लेक्स देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्बाइंड। कैनेडा वालों, ज़रा हमें बताइएगा कि आपके यहाँ पे लेक्स की कितनी भरमार है। You see about 25,000 sunrises and sunsets in your lifetime. ये वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे सनराइज और सनसेट दिखता है। हमारे तो क्लाउडी वेदर होता है ना तो हमारा नंबर 25,000 तो नहीं होगा। ओके, योर हार्ट बीट्स ओवर 100,000 टाइम्स एवरी डे। और ये हार्ट बीट्स तब बढ़ जाती है जब हम एंग्शियस होते हैं ना, तब भी हार्ट बीट्स उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर फोन इज़ प्रोबेबली डर्टियर देन योर टॉयलेट सीट। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस न्यूज़, लेकिन ये सत्य है। एंड व्हेन इट कम्स टू द मेन्यू कार्ड ऑफ द रेस्टोरेंट्स, जी हाँ, वो भी इतने ही गंदे होते हैं। तो ज़रा एक बार मेन्यू कार्ड देख लिया तो हाथ धो के आ जाइए या फिर सैनिटाइजर यूज़ कर लीजिए। ओके, आपकी अपनी हेल्थ की सुरक्षा के लिए। एंड यू आर टॉलर इन द मॉर्निंग देन नाइट। अब ये हाइट का क्या इसके पीछे गणित है, ये आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं। इस आवर का आखिरी गीत अगेन, चलो मेरी तरफ से आज का ना गीत वाला जो सेक्शन है उसमें हर एक आवर का नियरली आखिरी गीत आप सबके लिए डेडिकेटेड। फिर मुझे कुछ हमारे लिसनर्स पूछते हैं आज क्या खा के आई थी।
0: London's biggest classics all day. Like a gold. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
2: Like a gold.
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
4: की कह रहे हो?
3: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: की कह रहे हो?
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
6: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Great news, Tariq Al Al Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Al Al Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Al Al Rainers Lane.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही टीमअप के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02086767627।
12: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
13: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
12: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
13: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
12: दर्शन पण अने यूरोप पण।
13: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
12: कॉल 02089002323। Tours.
13: Travel once and you will travel again and again.
14: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
15: The Evening Show with Ashwini.

0: Swinney, brightening up your weeknights.
1: आइए आइए आइए, स्वागत है आपका तीसरे आवर में. वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. मजा आ गया ना? आई स्पेसिफिकली लव दैट पार्ट जब किशोर कुमार जी की एंट्री होती है और उनका जो मुशायरा शुरू होता है और पीछे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते ना, उफ उफ उफ. और एक उफ गाना सुनाऊं आप सबको? वॉल्यूम मध्यम रखिएगा और अगर घर में ब्राइट लाइट्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा जो लाइट का बटन है, अगर उसमें डिमर है ना, डिमर लगा लीजिए.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: नेदरलैंड्स एंड मोरक्को के बीच जो गेम हुआ उसे मोरक्को ने जीता। आइवरी कोस्ट एंड नॉर्वे में फुल टाइम हो चुका है, नॉर्वे जीत चुका है, उसने दागे दो गोल। फ्रांस और स्वीडन में 10 बजे अभी गेम शुरू होगा। एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट अप टू 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। नियरली 24 मिनट्स पास्ट 9 हो रहे हैं। 9:24, आप सभी ने ट्यून इन किया है, आप सभी का पसंदीदा लाडला फेवरेट लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी, मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 रहता है आपका मेरा साथ। मजा आया ना, क्या फैंटास्टिक ट्रैक्स थे भाई, सागर किनारे ओहो, मतलब बिल्कुल उफ वाले गाना। एंड मैं तो उफ कह रही हूँ, मेरे साथ में इतनी लंबी लिस्ट है आप सबकी कि आप सब कह रहे हैं कि सच में गहरी सांस लेके उफ निकल ही रहा है कि अमेजिंग ट्रैक्स हैं। ओके जी, तो अब आर्टिस्ट ऑफ द वीक में शमशाद बेगम की आवाज़ में सुनाएंगे आपको मदर इंडिया से ये गीत। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रैक। एंड उसके बाद में आ रहा है, बात करेंगे इस गीत के बारे में। एंड आई विल शेयर समथिंग विद यू गाइस। ओके,
0: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757। Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai।
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
5: वेलकम टू द जंगल।
2: फिल्म बिल्कुल फेक,
5: हमारे फिल्म आर्मी वाली
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
5: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
7: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
8: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में।
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: Think you might be overpaying for card payments?
9: Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
12: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: द इवनिंग शो विद अश्विनी
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ, इट्स 32 मिनट्स पास 9। तो फील गुड वाला ये जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये है अमित कुमार की आवाज़ में बालिका मधु से। आई एम श्योर आप लोग समझ चुके हैं मैं किस गीत के बारे में बात कर रही हूँ। सो इन 2015 व्हेन आई स्टार्टेड माय रेडियो जर्नी, अमित कुमार जी वॉज द फर्स्ट सेलिब्रिटी सिंगर जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था। और उस टाइम पे इनके साथ जब उन्होंने ये गीत गाया था ऑन एयर, और एंड देन ही सेड और तुम, एंड इसके बाद में सचिन पिलगांवकर जी एक मराठी फिल्म के लिए जब स्पेशल स्क्रीनिंग यहाँ पे हुई थी, कटियार कारजात घुसली, आई एम अ मराठी गर्ल, तो उस इवेंट पे हम लोगों की मुलाकात हुई बिकॉज आई वॉज एंकरिंग दैट शो। एंड सचिन जी का भी जब मैंने इंटरव्यू किया था तब उन्होंने भी ये गीत गाया था, एंड उन्होंने भी यही कहा था बड़े अच्छे लगते हैं और, एंड देन अगेन आई गॉट टू से और। देखो मैं सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन अमित कुमार जी के साथ में और इतना बोलने के लिए मिला, आई हाय आई वॉज ऑन क्लाउड 9। फिर सचिन जी के साथ में और ये मतलब ये गाने की स्टाइल में प्रेजेंट करने का मौका मिला, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। तो ये एक तो क्लाउड 9 ना सच में है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो हवा में उड़ रही थी। सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ट्रैक एंड बहुत अच्छा लगता है। सो सुनिए और लुत्फ उठाइए इस गीत का।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में every weekend 10 a.m. to 1 p.m. on Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester and Leica Radio Midlands पर.
0: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code Leica10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
11: You know, I fan shout at football matches.
12: Oh, wake up!
11: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
13: For £1, you'll get 125.34 Indian rupee, 368.79 Pakistani rupee, 445.66 Sri Lankan rupee, 163.37 Bangladeshi taka, 84.80 Afghan Afghani, 171.69 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
14: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cashback when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
14: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
13: Gold is currently trading at £97.44 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
14: Like a gold.
12: आप सबको बता दें कि गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, उसे जरूर सुनिएगा। काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, झगड़ा हो गया, नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, गोल्ड नाइट सर्विस है ना आपका साथ देने के लिए। लाइका रेडियो 90s, जिन्हें 90s के गीत पसंद हैं, 90s वाले बच्चे तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। लाइका रेडियो पंजाबी, पंजाबी गीतों के शौकीन है, जरूर सुनिएगा। एंड लाइका गोल्ड 2, बॉलीवुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप, इतनी सारी चीजें आपके मनोरंजन के लिए। ओके, सो गजल या कव्वाली, मैं क्या सुनाने वाली जी, आज सुनाने वाली कव्वाली ये मोहम्मद रफी की आवाज़ में अमर अकबर अंथनी से लाई हूँ, पर्दा है पर्दा। अरे यार, मतलब फैंटास्टिक, इट इज़ फैंटास्टिक। एंड बिल्कुल एंजॉय करिए अमर अकबर अंथनी, ये जो मूवी है ये इतनी क्लासिक मूवी है ना कि बचपन में कभी देखी थी, लेकिन जब भी इस फिल्म के कुछ गीत सुनती हूँ तो वो सारे के सारे ना ऐसे अपने आप आंखों के सामने ये चीज़ें छा जाती हैं। ओके, एंड क्या कहने वाली थी भाई, मैं सिर्फ इतना ही कहने वाली थी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। न जाने क्यों हम अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, प्यार काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए, तो प्यार दो, प्यार लो। पावर तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए चाहिए, नफ़रत तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए चाहिए। प्यार किया था ना तो आप अनकाइंड नहीं बन सकते, आप बिटर नहीं बन सकते। एम्पथी रखिए अपने साथ में हमेशा। कल मनाएंगे आपका और हमारा, भाई मेरा तो बड़ा फेवरेट दिन होता है, फील गुड वेंसडे। फील गुड फैक्टर के साथ आप सबको कहे जा रही हूँ गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कल मस्ती मजा इंटरेक्शन के लिए यहीं तैयार रहिए, मिलेंगे।
15: लाइका गोल्ड स्टार ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय स्टार टूर्स, 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों हैप्पी ट्रैवलर्स, इसलिए फैमिलीज के लिए स्टार टूर्स एक्सपीरियंस अलग होता है। विजिट StarTours.co.uk।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: Like a gold.
1: Location, location, location.
0: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
0: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
1: London, you asked and it's happening. Aditya Garvi Garba Tour UK 2026.
2: Lattuke halone nandala.
1: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Meetha khara. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Garvi live in London. Book now on AXS. Aditya Garvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line।
6: विल नहीं है, ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहा है।
9: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे आप पवित्र यात्रा पर।
8: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर,
9: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी साथे
8: दर्शन पण और यूरोप पण।
9: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ही बुक करो स्टार टूर साथे।
8: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर।
9: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
10: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Leica Gold. Leica Gold. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: जय श्री स्वामीनारायण। डेट संडे 19 जुलाई 2026, वार्षिक रथ यात्रा माटे भक्तों ने मर्शे भगवान श्री जगन्नाथ जी ना रथ ने हैरो अने ट्रेंट नी स्ट्रीट्स पर खेंचवानो पवित्र अवसर। यात्रा नी शुरुआत थशे SKSS टेम्पल केंटन हैरो थी अने समापन थशे श्री स्वामीनारायण टेम्पल स्टेनमोर पर। वधु माहिती माटे बन्ने टेम्पल्स ना सोशल मीडिया अने वेबसाइट्स SKSST.org और stanmoretemple.com विजिट करो। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो। जय श्री स्वामीनारायण।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.

0: का गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. Like a Gold on 10:35 a.m.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
2: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
3: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
8: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
8: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
9: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
11: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar Small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
12: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
13: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
11: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
12: Thanks. Playtime's over. Mmm. Lovely.
14: Feel the fun. Play Ojo.
15: 18 plus gamble aware.
16: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
18: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली।

0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।
1: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
2: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
3: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
1: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
2: Thanks. Playtime's over. Lovely.
4: Feel the fun. Play Ojo.
3: 18 plus gamble aware.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
0: Bollywood ke legend kalakar, sirf Laika Gold par.